गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह

नमस्कार सतगुरु प्रसाद गौड़ी सुखमनी महला पंजवा सलोक आद गुराए नमः जुगाद गुराए नमः सतगुराए नमः श्री गुरुदेवाए नमः अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावो।

खेयर किनका एक जिस जीव सावे ताकी महिमा घनी न आवे कांखी एक दर्श तुहारो नानक कुन संग मोहे उदारो सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भना बसै प्रभ गाय सिमरन दुख जम नसै प्रभ गै सिमरन काल पर हरै प्रभ गै सिमरन दुश्मन ठरै प्रभ सिमरत काश

सर पर निस्तरा। साधक संग लगे ब्र मीठा, साधु के संग घटकर डीठा। सा संग भया गया गारी, सा संगत भई हमारी। सा संग साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेदना जाने, जेता सुने तेता बख्याने। साध की उपमा तह गुण तह दूर, साध की उपमा रही प्रभुर। साध की सोभा का नाही।

इस प्रभु ने कृपा करा सो सेवक हो किस तेर डरा जैसा सा तैसा दृष्टा अपने कार्य में आव समाया सोदत सोदत सोद सीजिया गुरु प्रसाद तत्सब बुझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सुखम सोई स्थूल नह किश मरे नह के जन्मे नह किश मरे आपन चलत आप ही कराए आमन जाम दृष्ट अन दृष्टा आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट आपे आप सगल में आप आनंद जुगत राज थाप विथाप अविनाशी नाय कृष्ण कांड धारण धार्यो ब्रह्मंड अलख अपे पुरख प्रताप आप जपायता नानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभा बंद सगल संसार उतरे तन मंत प्रभु के सेवक सगल उदान प्रभु के सेवक दुख विसार नापे मेल लय कृपाल गुर का शब्द पय निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुनू कृपा करे बटपा के नाम जपत पावे विश्राम नानक तिर पुरख उत्तम करमान जो किश कराय सो प्रभु कै रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभायो वे सोए करने हार पछाण है सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस बजत समाये समाये ओए सुख निधान उन्हु बने आए आप सुभाव दिनो मान नानक प्रभु जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्राप बिरसा जानन हार जाके सिमरन उदरी जाय नानक तिस बलिहार अष्टपदी।

ओट गई संतेंद्र आया सर्व सुख नान ते पाया मृतक को जीवालनहार भूखे को देवत आधार सर्व निधान जाकी दृष्टि बाहे प्रभु लिखे का लेना पाए सबकी तिस्का हो करने जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जब जन सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मल ए करनी कर कृपा जिस गौ नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जाके मन गुरु की प्रतीत तुझने आवे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए ते रोए जाके हृदय एक होए सचगरणी सच ताकि रहत सच हृदय सतमुख कहत साची दृढ़ साचा आकार सच वरते साचा पासार पार ब्रह्म जन सचगर जाता नानक सो जन सच समाता स्वरूप रूप नारेख न रंग केश त्रैगुण ते प्रभिन्न तसे बुझाए नानका सोबै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी ब्रह्म मन में राख मानु की तू प्रीत त्याग तिस्ते परा नाय किश को सर्व निरंतर एको सो यापे बिना यापे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरणी पाऊ नानक मन एहनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन प्रण जाक नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जाने होर अनंत रूप मंगल सद जाके सर्व दोख सुनिए घर ताक राज मैं राज योग मैं जोगी तब मैं तबिसर ग्रस्त मैं भोगी त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तस्पुर का कने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे

नाना विद किन्नो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खन बाहे पूरे पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाव जब जब जीवे नान खर नाऊ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे अखंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सकल आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन श्रवन कर कृपा सपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत तपत सतकरणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भरी सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास तनान गुर ते पाए सत भजन साधु उपते सत जन जाके हृदय प्रवेश सत नृत बुझे जय को नाम जपत आगी गत हो आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गात जिसकी सृठ सो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते कीमित ना जाने किया नानक ज्योत भावे सो वरतिया बिस्मन बिस्मन बिस्म भय बिस्मा जन बुझा आया स्वाद प्रभु के रंग राज रहे गुरु का भजन पदार्थ लहे उए दाते दू काटन हार जाके संग तरा संसार जन का सेवक

भे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत विखन हार नाम सत सत ध्यान हार आप सत सत सब धारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभगता सुरत सत सत ज सुनता भजनार को सत सब होए नानक सत सत प्रभु सोए सत सुरु बृदे जन्मान्या करण कराम दिन मूल पछान्या जागे हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तत् मन प्रगटाया भय ते नरपोए पसाना स्तिप जय तस्माहे समाना बस्त माए ले बस्त गडाई दागो भिन्ना कहना जाई बुझै बुझनहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्बल रीत ठाकुर को सेवक जान संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवको प्रपालन हारा सेवकी राखे निरंकारा सो सेवक जिद्या प्रभु धारे नानक सो सेवक सास सास समार अपने जन का प्रदा ढक अपने सेवक की सरबर राखै अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राख ताकि गदमित कोई ना रख प्रभु के सेवक को ना बहुचे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो हो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक जो सेवक दैद से प्रगटाया निकी कीरी मैगल राख पसम करे लश्कर कोट लाख जिसका सासना काट त्याप ताको राख देख रहात मानस जतन करत भान जिसके करत बिरथे जात मारा न राख अबर न कोए सर्व जिया का राखा सोए काये सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ लख बिडाणी बारंग बार बार प्रभ जपिया पी अमृत मंत्र तृपिया नाम रतन जन गुरमुख पाया तिसक शबर नाही दृष्टाया नाम धन नाम रूप रंग नाम सुखर नाम का संग नामरा जो जंत्र बताने मंथन नामे नाम समाने

असंख जाप असंख पाव असंख पूजा असंख तप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास

श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पात साही दसवीं शपै शांत व प्रसाद चक्र चिहन अर जब अर बरन जात चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नह जे रू

प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे खल जोगे चल भोगे चल राजे टल साजे अखर धर्म अलाह कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पहने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता

एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूपे अनेक खेल खेल अखेल खेल अंत को फिर एक देव भेव न जान ही जेह वेद और कतेव रूप रंग न जात पासो जान ही कह जेव तात मात न जात जाकर जन मन भीन

चंद्र के सर्वम कली में के परमं फही में के आकल अला में के साहिब कला में के हुसन अल वजू है तमाम रुजू है।

आस है, के अजब स्वरूप है, के अमितो विभूत है, के अमितो पासा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग नांग है, के अमितो भांग है, मद पर शांत वे प्रसाद, मुन मन प्रणाम, गुण गण मुदाम, हर भरे गंज हर नर पर भंज, अन गण प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड भर नर अमंड, अन भव नास, मुन मन प्रकाश, गुण गण प्रणाम, जल थल मदाम, अन सिंज अंग आसने भंग उपमा पार, गत मिते उदार, जल थल अमंड, दिस विस अभंड, जल थल महंत, दिस विस बेअंत, अन भवे नास, त्रित तार तो रास, आ जान बाहो कै सदाहो, ओंकार आदि कथनी अनाद, खल खंड ख्याल, गुरबरे अकाल,

ठकर्म आन ब्रहण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत व प्रसाद करण वाले हैं हर काले हैं खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है।

0: सतगुरु आयो शरण तुहार मिले सुख नाम हर शोभ चिंता लाए हमार।
1: धन श्री हर कृष्ण त्याई जे डिठे सब दुख जाए। धन श्री हर कृष्ण त्याई जे डिठे सब दुख जाए। धन श्री हर कृष्ण त्याई जे डिठे सब दुख जाए। धन श्री हर कृष्ण त्याई जे डिठे सब दुख जाए। धन श्री हर कृष्ण त्याई जे डिठे सब दुख जाए। धन गुरु तेग बहादुर सिमरिया।

0: तन गुरु तेग बहादुर सिमरि करनानि दयावै ताहि सब धाइ होइ सहाय
1: तन गुरु तेग
0: बहादुर सिमरि करनानि दयावै ताहि सब धाइ होइ सहाय
1: तन गुरु तेग
0: बहादुर सिमरि करनानि दयावै ताहि सब धाइ होइ सहाय
1: श्लोक महल्ला पांचवा तेरा।

सोठ महला पांचवा हम मैले तुम उज्जल कर हम मैले तुम उज्जल कर हम निर्गुण तुम दाता हम मैले तुम उज्जल कर हम निर्गुण तुम दाता हम मूर्ख तुम

0: अनंत सब जाच तुम निधान अटल सुल्तान जी संत जंत सब जाच
1: कौन नानक
0: हम है हवाला राख संतन के पाच
1: कौन
0: नानक हम है हवाला राख संतन के पाच
1: गौड़ी महला पंचमा फिर कर बैस हर जन प्यारे सतगुर तुम्हारे काश वारे

0: मन विलास परसाई के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक पूरन बैज रखाई
1: हर सिमर सिमर आनंद कर
0: नानक पूरन बैज रखाई
1: क्या श्री कृष्ण गोविंद
2: देव मकंद
0: उदास।

0: राज मिलक खुशियां कणी चाहे मुख न मोड़, राज मिलक खुशियां कणी चाहे मुख न मोड़, टाडी दर मंगना दर कदे न छोड़े, टाडी दर मंगना दर कदे न छोड़े, नानक मंतन जाओ इनत प्रभु को लोड़े, नानक मंतन जाओ इनत प्रभु को लोड़े, नानक मंतन जाओ इन प्रभु को धन धन। मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब, तू ही निरंकार है, तू सदा सलामत रहना, तू ठाकुर उच्च भगवान, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति ला, मांगो दान ठाकुर, धन धन। मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब, तू ही निरंकार है, तू सदा सलामत रहना, तू ठाकुर उच्च भगवान, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति ला, मांगो दान ठाकुर, धन गुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज, धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज, कोट कोट प्रणाम, भुल चुक माफ, तेरे चरण कमला पास, बहुत बहुत धनबाद, नानक नाम चढ़ तेरे भाणे स्वादा पर, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।
1: दीन दर्द दुख भंजना कट कट ना

सम्मान योग गुरु सवारे सत संगी जनो सतगुरु गुरु रामदास जी दे पावन पवित्र दरबार दे कीर्तनी भाई साहब भाई बलदेव सिंह जी ने सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की प्रसन्नता लैन लई इस सीडी विच सतगुरु गुरु रामदास जी की सिफत विच अमृत बचना दा कीर्तन हाजूर दी प्रसन्नता लैन लई कीता। सारे शब्द तकरीबन सतगुरु दी सिफत सलाह ते गुरु जी दी वडियाई दे विच ही गुरु ग्रंथ साहिब विचों जो लै गए ए हजूर दी वडियाई विच उचारण कीते। इन्हां दा शब्दां दा प्रकरण यही है कि अपने समर्थ सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी सिफत सलाह उसनू धन कह के वड्डियां कह के उच्चा कह के समर्पित कीती जाए। गुरबाणी मुताबक ए सच्चाई है कि जेड़ा परिपूर्ण परमात्मा दी समर्थ गुरु दी उपमा करेगा वड्याई करेगा ते गुरु उस वड्याई विच वड्याई करन वाले नू बरकतां बख्शां देंदे। आम तौर ते संसार विच दो बिरतियां प्रचलित ने, एक उस्तत ते दूसरी निंदिया। संसार दी उस्तत लालची खिरसी तमा वाला बंदा करदा है ते जो हिरस लालच तमा रख के स्वार्थ रख के किसी की झूठी उस्तत करेगा ते कुदरती है ओ ईरखा वस होया द्वेष वस आया अंदर दे हंकार दी सट वजन दे कारण किसी दी निंदिया भी जरूर करेगा। संसार दी उस्तत दा दूसरा पहलू है कि निंदिया। पर जदो कोई सम्राट सतगुरु दी परमात्मा दी उस्तत करदा है इस विचो एक ता संसार दी निंदिया संसार दी द्वेष मिटदी है ते दूसरा जिस दे गुण गाए जा रहे ने जिस दी उस्तत कीती जा रही है कुदरती तौर ते उस दे गुण उस दी सिफत उस दी वड्याई करन नाल उस वड्डे दे गुण सिफत करन वाले दे अंदर प्रवेश कर जांदे। जिन्नी कोई परमात्मा दे गुण गाउंदा है ओने परमात्मा दे स्वभाविक गुण कीर्तन गुण गायन करन वाला सिफत करन वाला ओदे अंदर प्रवेश कर जांदे। जो भाई साहब ने शब्द गायन कीते ने उन्हां विच समर्थ गुरु नूं धन कहण दी उच्चा कहण दी वड्डिया कहण दी उस नूं सब तो उच्चा सवकारन लई हजूर ने प्रेरणा कीती। इसे कारण इस अमृत बचना दी लड़ी विच ए बचन वड्याई गुरमुख दे प्रभ हर पावै सोई गुरमुख नानक आराध्या सब आख

0: संग
1: हे मन के गन जाए न को सा
0: हर का नाम उहा संग तोसा
1: प्रचंड मानद गुबारा
0: हर का नाम संग उजियारा
1: पंत तेरा को ना